सीखने वालों में सीखने वालों में सीखने इच्छा मालों में सीखी नी आए खत माने के रे पुशे ना को यार रे पुशे के बाग से मामा थले रे गरे को छोरे गाड़ी से के को छोरे गाड़ी से के ले मस्पाने खत माने